सुप्रभात अंबाला, स्वागत है आप सभी का आज के प्रसारण में। आज है 9 मई 2026 शनिवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी 2083 विक्रम संवत। अंबाला में सूर्य उदय हुआ है 5:33 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:06 पर।

महापुरुषों के वचन श्रवण करके जिन्होंने उस तरफ अपना मुख कर लिया, उन्हीं के हिस्से लोक परलोक का संवरना आ गया। वरना तो जिसको सबसे अच्छा युग मानते हैं, उसी सतयुग में भक्त प्रह्लाद जैसे को उसी के पिता ने होलिका का सहारा लेकर जलाने का प्रयास किया, और त्रेता जैसे युग में भी ककई का इस्तेमाल करके मंथरा चाल चलती रही।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 13। आज का कार्यक्रम आधारित है गीतकार साहिर लुधियानवी पर। कार्यक्रम को रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपुरी ने, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरनी।
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके रेडियो दोस्त किरनी और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरे पल। आज का सफर उर्दू के उस अजीम शायर के नाम, जिसने अपनी कलम से हर तलखी को नज़म बना दिया, जिसने कहा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जी हाँ, आज हम साहिर लुधियानवी के पहलू टटोलेंगे और उनके बेहतरीन गीतों के साथ इस सफर को यादगार बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। साहिर का असली नाम था अब्दुल हई। 8 मार्च 1921 को लुधियाना पंजाब में उनका जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ, लेकिन उनकी किस्मत में बचपन से ही कड़वाहट लिखी थी। जमींदार पिता और मां सरदार बेगम के बीच के तनाव ने उनके शुरुआती सालों को खौफ और आर्थिक तंगी में गुजारा। पिता ने मां पर मुकदमे किए, साहिर की जान को खतरा हुआ और इस भयानक माहौल ने साहिर के भीतर एक विद्रोही शायर को जन्म दिया। उन्होंने लुधियाना के सरकारी कॉलेज में पढ़ाई की, जहां उनकी नज़में बेहद मशहूर हुई, लेकिन एक सहपाठी लड़की से प्रेम संबंध के चलते उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। ये निष्कासन उन्हें और उनकी माँ को पहले लाहौर और फिर 1949 में बॉम्बे ले आया। उनका पहला कविता संग्रह तलखियां 1945 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें निजी दर्द और समाज के प्रति तीखी आलोचना थी। बॉम्बे आकर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया। वो सिर्फ लोकप्रिय गाने लिखने को तैयार नहीं थे, वो चाहते थे कि उनके गानों में शायरी का एक गहरा एहसास हो। फिर उनकी मुलाकात हुई SD बर्मन से, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना। बर्मन साहब ने एक धुन दी और साहिर ने उस धुन पर लिखा वो अमर गीत, जिसने उन्हें एक फिल्म गीतकार के तौर पर स्थापित कर दिया। पेश है साहिर की कलम से निकला फिल्मी दुनिया में पहचान दिलाने वाला पहला कदम।

0: ठंडी हवाएं एक ऐसी सादगी जो दिल को छू जाती है। इस गीत की सफलता के बाद साहिर और एसडी वर्मन की जोड़ी ने बाजी, जाल और टैक्सी ड्राइवर जैसी कई हिट फिल्में दी, लेकिन साहिर का असली इनकलाबी पहलू अभी सामने आना बाकी था, जिस पर हम अब रोशनी डालेंगे। साहिर लुधियानवी को हिंदी सिनेमा का इनकलाबी शायर कहा जाता है। वो पहले गीतकार थे जिन्होंने अपने गीतों के लिए परिश्रमिक तय करने पर जोर दिया और फिल्म के पोस्टर पर गीतकार को संगीतकार के बराबर जगह दिलवाई। वो सिर्फ प्रेम गीत नहीं लिखना चाहते थे, उनका मानना था कि एक कलाकार को समाज की बुराइयों को उजागर करना चाहिए। 1957 में फिल्म प्यासा आई, जिसमें साहिर ने गुरुदत्त के लिए अपनी सारी कड़वाहट, अपना सारा विद्रोह उड़ेल दिया। उन्होंने गरीबी, बेबसी और इंसानियत के गिरते मूल्यों पर वो सवाल उठाए जो आज भी गूंजते हैं। उनका ये गीत एक शायर की पीड़ा थी, जब उसने देखा कि उसकी कला और कविता को महज मनोरंजन का जरिया बना दिया गया है। पेश है फिल्म प्यासा से वो नज़्म जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कदावर नेताओं को भी भावुक कर दिया था।
1: जाने वो कैसे?

जाने वो कैसे लोग थे, आज भी हर संवेदनशील दिल इस गीत से जुड़ाव महसूस करता है। इस गहन सामाजिक दृष्टिकोण के बावजूद साहिर की रोमानियत भी बेमिसाल थी। उन्होंने प्यार को सिर्फ फूल और चांद तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जिंदगी के उतार चढ़ाव में एक सच्चा साथी माना। फिल्म हम दोनों में संगीतकार जयदेव के साथ साहिर ने एक ऐसा फलसफा पेश किया जो आज भी मुश्किलों में जीने का हौसला देता है। ये गीत हमें सिखाता है कि जिंदगी के साथ चलने में भी असली खुशी है। फिल्म हम दोनों से मोहम्मद रफी साहब की आवाज में सुनिए जिंदगी के सफर का ये अमर गीत।

1960 का दशक साहिर के करियर की ऊंचाई थी। उन्होंने खयाम, रवि, रोशन और एन दत्ता जैसे कई महान संगीतकारों के साथ काम किया। साहिर की लेखन शैली की खासियत थी उनकी भाषा में मौजूद सादगी, जो सीधे दिल में उतर जाती थी। साहिर को उनकी रचनाओं के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। 1964 में फिल्म ताजमहल के लिए और फिर 1977 में फिल्म कभी कभी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ताजमहल में उन्होंने एक ऐसे प्यार को लफ्ज दिए जो महलों से बड़ा और वादा निभाने की कसौटी पर खरा उतरता है। एक ऐसा वादा जो हर युग के प्रेमियों के लिए एक मिसाल बन गया।

साहिर का एक और पहलू है जो फिल्म वक्त में नजर आता है। उन्होंने इस फिल्म में एक गहरी बात कही कि इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वक्त सबसे बड़ा है। उन्होंने कल की चिंता और गुजरे हुए कल के अफसोस से मुक्त होकर आज में जीने की सीख दी, क्योंकि जो कुछ भी है वो बस यही एक पल है। फिल्म वक्त से ये गीत जो हमें समय की सच्चाई से रूबरू कराता है और साथ ही जिंदगी जीने का हुनर भी सिखाता है।

साहिर की रूमानी नज्मों में हमेशा एक सूक्ष्म विद्रोह मौजूद रहा। फिल्म हमराज में उन्होंने नीले गगन के नीचे बैठकर अपने महबूब से दूर रहने की कल्पना की, लेकिन उस दूरी में भी प्यार की शिद्दत को कम नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा अपने व्यक्तिगत दर्द और भावनाओं को प्रकृति के विशाल कनवास पर उकेरा।

0: अब आते हैं साहिर की जिंदगी के सबसे चर्चित और अमर पहलू पर, अमृता प्रीतम के साथ उनकी अधूरी मोहब्बत। ये वो प्रेम कहानी थी जो हकीकत में मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन अदब में अमर हो गई। साहिर की इस अधूरी चाहत ने उन्हें कभी कभी जैसे कालजयी रचना करने के लिए प्रेरित किया। ये गीत सिर्फ एक प्रेम घोषणा नहीं है, बल्कि एक सपना है, एक ख्याल है कि अगर जिंदगी उस मोहब्बत की छाँव में गुजरती तो कितनी खूबसूरत होती। 1976 की फिल्म कभी कभी से मुकेश साहब की भावुक आवाज में साहिर लुधियानवी की कलम का सबसे बेहतरीन रूमानी इजहार।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

साहिर लुधियानवी, जिन्होंने कहा था, मैं किसी गैर के आंखों का नूर क्यों बनूं, मैं किसी और के ख्वाबों में क्यों रहूं। अपने सिद्धांतों पर डटे रहने वाले ये महान शायर 25 अक्टूबर 1980 को दिल का दौरा पड़ने से हमें अकेला छोड़ गया। लेकिन जाते जाते उन्होंने हमें एक और जरूरी बात सिखाई, अगर कोई रिश्ता निभाना मुमकिन ना हो तो उसे बेवजह खींचने के बजाय एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना चाहिए। उनकी इस फिलॉसफी को दर्शाता फिल्म गुमराह से उनका ये विदाई गीत।

ये था आज का सफर मशहूर गीतकार साहिर लुधियानवी पर। आज के इस कार्यक्रम का सफर यही समाप्त होता है। मिलूंगी किसी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

0: सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 13। आज का एपिसोड आधारित था गीतकार साहिर लुधियानवी पर। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरने ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पर फोन।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो। आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी और आज आपके लिए लाया हूं कृषि समाचार। आज इस कार्यक्रम में मेरा साथ देंगे,
2: मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: तरबूज व खरबूज की फसल में हो सकता है लाल बूंदी कीट का प्रकोप, निराई गुड़ाई करें। फूल आने के समय प्रति एकड़ 6 किलोग्राम नाइट्रोजन डालें। तरबूज और खरबूज की फसल में लाल बूंदी नामक कीट का प्रकोप हो सकता है, ऐसे में फसल की निराई गुड़ाई करें और उचित सिंचाई का प्रबंध करें। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर गंबोज ने बताया कि फसल में फूल आने के समय लगभग 6 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ की दर से दें और सिंचाई करें। लाल बूंदी नामक कीट का प्रकोप होने पर 25 मिलीमीटर साइपरमेथिन 25 EC या 30 मिलीमीटर फेनवेरेट 20 EC को 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़के। पौधों की जड़ में लट ग्रब लगी हो तो किसान 1.6 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC को बिजाई के 1 माह बाद सिंचाई के साथ प्रति एकड़ लगाएं। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर किसान फसलों से अधिक उत्पाद लेकर अच्छी आमदनी ले सकते हैं। चेपा व हरा तेला होने पर रोगग्रस्त फल तोड़ दें। चेपा, हरा तेला या माइट का प्रकोप होने पर रोगग्रस्त फल तोड़ दें। 250 मिलीमीटर मेलेथियन 50 EC को 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ खेत में छिड़काव करें और आवश्यकता अनुसार दोहराएं। फल मक्खी लगाने पर 400 मिलीलीटर मेलाथियन 50 EC और 1.25 किलोग्राम गुड़ को 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। 10 दिन के अंतर पर आवश्यकता अनुसार दोहराएं। पाउडरी मेलेड्यू रोग से बचाव के लिए छिड़काव करें। पाउडरी मेलेड्यू रोग लगने पर 500 ग्राम गुलनशील गंधक यानी सल्फेक्स का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ फसल पर छिड़काव करें। अधिक व भरपूर फसल लेने के लिए तरबूज में 25 ppm और खरबूजे में इथेल 100 ppm का घोल बनाकर 2 व 4 सच्ची पत्तियों पर छिड़काव करें। जिब्रेलिक एसिड अल्कोहल में गुलनशील है। टमाटर को चूरडा पत्ता लपेट रोग से बचाएं। टमाटर की फसल में विषाणु रोग, पत्तों का चूरडा मुरडा, पत्ता लपेट, धारियों वाला मोजक हो सकता है, ऐसे पौधों को निकालकर नष्ट कर दें। हर सप्ताह सिंचाई करें। खेत में पौध रोपने के बाद 35 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ आदि 2 बार में दें। प्रथम मात्रा रोपाई के लगभग 3 सप्ताह बाद और दूसरी मात्रा फसल में फूल आने के समय करें। सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए 400 मिलीलीटर मेलाथियन 50 EC को 250 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतर पर प्रति एकड़ छिड़कें। यदि फल छेदक सुंडी का आक्रमण हो तो 75 मिलीलीटर फेनवेरेट 20 EC या 200 मिलीलीटर डेल्टा मैथिन 2.8 EC या 60 मिलीलीटर साइपरमेथिन 25 EC को 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़कें। इस माह के अंत तक अमरूद और आम के पेड़ों की सूखी व अनावश्यक टहनियां की हल्की छिटाई कर सिंचाई करें। गर्मी में पेड़ों के बोर को बचाने के लिए किसान अपनाएं वैज्ञानिक तरीका। अप्रैल में बढ़ती गर्मी बागवानी के लिए बड़ी चुनौती पेश करती है। इस समय आम के पेड़ों पर फल बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन नमी की कमी और पोषक तत्वों के अभाव में फ्रूट ड्रॉप यानी फल गिरने की समस्या बढ़ती है। इस माह के अंत तक पेड़ों की हल्की छुटाई करें। डॉक्टर कमल सैनी DHO करनाल अनुसार यदि किसान सही प्रबंधन करें तो आम और अमरूद दोनों की फसलों से मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। अप्रैल की गर्मी में आम के छोटे फसलों को बचाने के लिए किसान कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर प्रबंधन करें। समाधान के लिए किसानों को ये महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। नियमित सिंचाई, मिट्टी में नमी की कमी ना होने दे, सुबह या शाम को ही सिंचाई करें। प्लानो फिक्स का छिड़काव, फलों को झड़ने से रोकने के लिए 4 मिलीलीटर प्लानो फिक्स को 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। बोरिन की पूर्ति, फलों को फटने से बचाने और उन्हें चमक देने के लिए 2 ग्राम बोरेक्स प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। सिंचाई रोकें, अप्रैल और मई में अमरूद के पेड़ों को पानी ना दें, इससे बारिश में आने वाले फूल झड़ जाएंगे और पेड़ सर्दियों की फसल के लिए अपनी पूरी शक्ति बचा पाएंगे। छिटाई, अप्रैल के अंत में पेड़ों की सूखी और अनावश्यक टहनियों की हल्की छिटाई करें ताकि नई कोपलें आ सकें। बढ़ती गर्मी और कीटों से सुरक्षा, इस मौसम में हॉपर, मधुआ कीट और मिली बग का प्रकोप बढ़ जाता है, ये फलों का रस चूसकर खराब कर देते हैं। नीम तेल या कीटनाशक का प्रयोग करें। लू से बचाने के लिए तनु पर चूने की पुताई करें और जड़ों के पास सूखी घास या पुआल जरूर बिछाएं। मिट्टी की जांच के आधार पर करें सिंचाई। अप्रैल का महीना फल की नींव रखने का समय है। इस महीने में की गई लापरवाही सीधे उत्पादन पर असर डालती है। किसान खाद और उर्वरक का प्रयोग हमेशा मिट्टी की जांच के आधार पर और सिंचाई के तुरंत बाद ही करें।
2: 50-60 दिन में तैयार हो जाती है खीरे की फसल। प्रति एकड़ 100 क्विंटल उत्पादन। भुरभुरी और जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त। खेतों में इन दिनों खीरे की फसल पूरी तरह तैयार होकर किसानों को अच्छी आमदनी की उम्मीद दे रही है। मंडी में 8 से 10 रुपए किलो का भाव अभी मिल रहा है, यह बढ़ भी सकता है। दिल्ली की आजादपुर मंडी के अलावा लोकल मंडियों में भी किसान खीरा पहुंचा रहे हैं। प्रति एकड़ 80 से 100 क्विंटल तक भी उत्पादन हो रहा है। प्रति एकड़ 80,000 से 1.25 लाख रुपए तक आमदनी हो रही है। कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर राजेश वेरवाल ने बताया कि खीरे की फसल सामान्यतः 50 से 60 दिनों में तैयार हो जाती है और इसकी 10 से 12 बार तुड़ाई की जा सकती है। कटाई उसी समय करनी चाहिए जब फसल हरे, कोमल, ताजे और बाजार योग्य आकार में हो। समय पर तुड़ाई करने से फसल की गुणवत्ता बनी रहती है और किसानों को बेहतर दाम मिलते हैं। किसान तुड़ाई के बाद छटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग और समय पर विपणन पर ध्यान दे तो यह फसल कम समय में अधिक लाभ देने वाली साबित हो सकती है। खीरे की खेती रेतीली दोमट से लेकर भारी मिट्टी तक सफलता पूर्वक की जा सकती है, लेकिन इसकी अच्छी पैदावार के लिए जैविक तत्वों से भरपूर भुरभुरी और जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसके लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। समय पर खेती की तैयारी, अच्छी किस्म का चयन, संतुलित खाद और नियमित सिंचाई से किसानों को इस बार बेहतर परिणाम मिले हैं। खीरे की प्रमुख किस्मों में विराट, कीर्तिका, नाजिया, गणपति, राजा एडवांटा जैसी किस्मों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इनमें से कुछ किस्में संरक्षित खेती के लिए उपयुक्त हैं, जबकि कुछ खुले खेतों में भी शानदार उत्पादन देती हैं।
1: ये थे आज के कृषि समाचार और उम्मीद करते हैं कि आपको इन कृषि समाचारों से फायदा होता होगा। अगर आपके पास भी कोई कृषि समाचार है, आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेजें ताकि हम और किसान भाइयों तक उसको पहुंचा सकते हैं। हमारे स्टूडियो का व्हाट्सएप नंबर है 5641300। नंबर एक बार फिर 7054130100। अब अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले कृषि समाचार में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।
3: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। प्रस्तुत है कार्यक्रम किडनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट एपिसोड 13। आज का शीर्षक है कारण भी हम निवारण भी हम। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड और एडिट किया भारत सोपोरी ने, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आज किडनी।

आप सुन रहे हैं किडनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की हरवानी। आज का टॉपिक है कारण भी हम निवारण भी हम। मुस्कान का वजन दिन पर दिन तेजी से बढ़ रहा था। जब उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने उसे अपनी दिनचर्या के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहा। डॉक्टर को समझ आया कि वो अधिकतर पैक्ड या प्रोसेस्ड भोजन खाती है, उसकी शारीरिक गतिविधियां शून्य है, अक्सर दोस्तों के साथ बाहर खाना पसंद करती है, ऐसे चीजों का सेवन कर रही है जिनसे पोषण नहीं मिल रहा है लेकिन शरीर में चर्बी बढ़ रही है, बैठे बैठे टीवी देखना, मोबाइल चलाना भी उसे शारीरिक रूप से सक्रिय होने से रोक रहा है। आज हम सभी जिस तेज और डिजिटल जीवन शैली में जी रहे हैं वही हमारी बीमारियों की जड़ बन चुकी है। समय के साथ हमारे रहन सहन में बदलाव आया लेकिन इस बदलाव के साथ हमने अपनी जीवन शैली को भी इतना बदल दिया कि उसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने लगा। नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ मोटापा बढ़ा बल्कि कई और बीमारियों को भी हमने खुद ही न्योता दे दिया। ये बात हम अभी महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं और कैसी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जब हम पहले की और आज की जीवन शैली के बीच के बदलावों को समझे तब इसका एहसास होगा, तब और अब के फर्क को समझते हैं। शारीरिक गतिविधियों की कमी, पहले बच्चे पार्क में खेलते थे, दौड़ते थे, लोग पैदल ज्यादा चलते थे, महिलाएं और पुरुष दिन भर किसी न किसी काम में व्यस्त होते थे, बातचीत के लिए ही बैठते थे और लेटते तभी थे जब सोने जाते थे। अब बच्चे खेलने नहीं स्क्रीन पर जीते हैं, चलना लगभग खत्म हो चुका है, यहाँ तक कि सब्जी लेने के लिए भी हमारे कदम नहीं गाड़ी के टायर चलते हैं। एक औसत बच्चा रोजाना 3 से 4 घंटे स्क्रीन पर बिताता है। बैठे रहने से प्रति घंटा सिर्फ 80 से 100 कैलोरी बर्न होती है जो वजन और चयापचय दर पर निर्भर करता है। वही खेलने कूदने से 400 से 500 कैलोरी तक खर्च हो सकती है। असंतुलित आहार और जंक फूड, पहले केवल घर का बना खाना खाते थे, घी और मक्खन घर पर बनता था, खाने में दाल रोटी और ताजी सब्जियां हुआ करती थी। अब प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड स्नैक्स और इंस्टेंट नूडल्स आदि का सेवन किया जा रहा है। खाने में पोषण नहीं केवल मैदा है, प्रोसेस्ड चीज और पाम ऑयल का सेवन अधिक हो रहा है। पास्ता, पिज्जा, बर्गर आए दिन खा रहे हैं। एक बड़ा बर्गर 500 से 600 कैलोरी का होता है जबकि एक थाली में परोसी संतुलित दाल रोटी में 300 से 400 कैलोरी होती है। मीठे पाई और शक्कर की अधिकता, पहले पाई में जूस, छाछ, लस्सी, पन्ना आदि पीते थे जबकि इनके लिए तो कोई मशीन भी नहीं थी। अब मीठा वजन बढ़ाने का सबसे आसान तरीका बन गया है। पैकेज्ड जूस, कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन बढ़ गया है जिसमें ज़्यादा शक्कर होती है। प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स से भरपूर एक गिलास छाछ में 50 कैलोरी होती है, वही एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में 150 कैलोरी जिससे केवल शक्कर और रसायन है। शक्कर शरीर में फैट स्टोरेज को तेजी से बढ़ा सकती है। अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करें, अपने हाथों और पैरों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश करें। लगातार सक्रियता शरीर को व्यस्त और मस्तिष्क को सजग बनाए रखेगी। लगातार बैठकर काम कर रहे हो तो कुछ देर चहलकदमी करें फिर बैठें। जो चीजें पौष्टिक नहीं है और वजन बढ़ाने का कारण बनती है उन्हें घर में रखना ही बंद कर दें। अक्सर लोग सोचते हैं कि चीट डे पर बर्गर, पिज्जा आदि खा सकते हैं लेकिन ऐसे करने से आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। सच तो ये है कि चीट डे जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर बाहर खाना ही है तो ऐसी जगह जाए जहाँ सेहतमंद और संतुलित भोजन विकल्प मौजूद हो। दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पिए, रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें, टीवी देखते हुए या फोन चलाते हुए खाना खाने से बचें, धीरे धीरे खाएं और हर निवाले को अच्छी तरह से चबाएं, साथ ही अपनी थाली को भी माइंडफुली सजाएं। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: Deutsche Bozan 90.0 रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी हम।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। ललेश्वरी, जिन्हें ललदेव या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत कवियत्री और शिव दर्शन की प्रमुख साधिका थी। उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए। उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है। ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं। शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला।
2: नमस्कार, आज का जो ललवाक है वो माता ललेश्वरी शिव योगिनी का बड़ा ही महत्वपूर्ण वाक है। ये ललवाक पहले मैं आपको कश्मीरी में सुनाता हूँ। मकरिस मलजन सोलु मनस, मकरिस मलजन सोलु मनस अद लबम जनिस जान, सुयल ड्यूठुम निष्पानस सोरई सुतई बनो के। यानी हमारा मन हमेशा शुद्ध नहीं होता, और ये शुद्धता इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें इच्छाएं, इसमें आकांक्षाएं, इसमें अपेक्षाएं, इसमें वासनाएं भरी पड़ी होती हैं, और इनके कारण से हमेशा मेरा मन अशांत रहता है, और ये अशांत विचार इस मन को ढक के रख देते हैं। यही मल कहलाता है, और यही मल हमारे असली स्वरूप को हमसे छिपा के रखता है। जैसे जैसे हम मन का थोड़ा सा भी मल दुलाना शुरू कर देते हैं, यानी उस अवेयरनेस के प्रति हम जागरूक होना शुरू हो जाते हैं, तो भीतर से आत्मा का जो प्रकाश है वो झलकने लगता है, और निरंतर साधना और ईश्वर की कृपा से ये शुद्धि बढ़ती जाती है। यानी ऐसा नहीं कि एक बार, ये निरंतर प्रयास करते रहना है, और धीरे धीरे आत्मज्ञान जागृत होने लगता है, और जैसे जैसे आत्मज्ञान जागृत होने लगता है वो जो अहंकार है, जो मैं है, वो मैं मिटना शुरू हो जाता है। तब हमें अनुभव होता है कि जो मैं वाला मैं हूं वो कुछ भी नहीं, और जो वो वाला मैं है अहम, वो जो शिव का अहम है, वही सब कुछ है। यही शिव को जानने की एक प्रक्रिया है। आइए मैं नीरजा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी सरस्वती के मुखमंडल से इस ललवाक को हमारे सामने प्रस्तुत करें।

दोस्तों भोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हूं भोजन रूजियो पनिन पसंदीदा बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

बांधी सुबह जौना नदी के उस पार, पूछ की आवने उनसे उनका हाल, क्या करती हैं, कैसी रहती हैं, कैसी सोती हैं, कौन सी करवट लेते हैं वो, उनकी आंखें छू कर आउन, उनके माथे को चूम कर आउन, उनसे पूछ के आउन, वो चुपचाप क्यों रहते हैं, क्या मेरे बारे में कभी सोचते हैं। सुबह जाओ न उनके हाथों की लकीरों रेखाओं को पढ़ के आओ न उनसे जाके कहो न एक बार मिलने आओ न ऐ बादी सुबह जाओ न उनके हाथों की लकीरों रेखाओं को पढ़ के आओ न उनसे जाके कहो न एक बार मिलने आओ न ऐ बादी सुबह जाओ न नदी के

जहाँ पे मेरी बन आई उसका क्या, उसने तो बस एक नजर देख लिया, पास बैठा दो घड़ी, वादा किया रुखसत हुआ, उसका क्या उम्र भर तन्हा तो हमने ये जीवन जिया। उम्रे तन्हाई अपनी बेजारी पे हम रोते रहे, उसका क्या उसने तो बस एक गहरा दर्द दिया, आंख में मोती चुने और बरसे उस पर रात भर, उसका क्या उसने तो बस इश्क में हमको पाकीज़ा किया। मैं अपनी रूह का आशिक था और शायर भी था, उसका क्या उसने अपनी जात में फिर भी न हमें शामिल किया। मैं अपनी रूह का आशिक था और शायर भी था, उसका क्या उसने अपनी जात में फिर भी न

किसी पल अपनी प्यार भरी आवाज से बुलाना मुझको, जो हो जाओ जिंदगी में तन्हा किसी पल अपनी प्यार भरी आवाज से बुलाना मुझको।

0: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: सही रास्ता सही चुनाव सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++ CGPA 3.72
1: कोर्सेज 22+ UG PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस वाईफाई मॉडर्न लैब्स स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।

प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गोष्ठी एपिसोड 7। आज के आमंत्रित मेहमान है कवित्री श्रीमती इंदु शर्मा। कार्यक्रम रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट प्रस्तुतकर्ता व निर्देशन भारत सोपोरी।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। हाजिर हूं आज काव्य गोष्ठी का ताजा अंक लेके, जहां आज के आमंत्रित मेहमान से हम कविता पाठ तो सुनेंगे ही, साथ ही इनके जीवन के बारे में भी जानेंगे और सुनाएंगे इनके मनपसंद गीत भी। नारी सदा ही सम्मानीय रही है। संस्कृत के एक श्लोक का अर्थ है, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता ने आमंत्रण दिया है एक सशक्त नारी को, जो एक शिक्षा विद्वान भी है और साथ में कवित्री भी है, जिनका स्वागत मैं करना चाहूंगा इन पंक्तियों के साथ। स्वागत है तुम्हारा शब्दों की रानी, कविता की तुम हो मधुरिम कहानी, भावों के सागर की लहरें हो तुम, हर दिल की पीड़ा का मरहम हो तुम। आज एफएम 90.0 रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में आमंत्रित है श्रीमती इंदु शर्मा जी। स्वागत, अभिनंदन आपका आज के काव्य गोष्ठी कार्यक्रम में।
1: बहुत धन्यवाद भरत जी। एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता अंबाला के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दे इंदु जी, ताकि आपको वो अच्छे से जान सके, साथ ही ये बताएं आपके लिए कविता क्या मायने रखती है।
1: मैं इंदु शर्मा, बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से हूँ और आफ्टर मैरिज मैं यमुनानगर में रहती हूँ। पेशेवर मैं एक अध्यापिका हूँ और जैसे कि आपने पूछा कि कविता के मेरे लिए क्या मायने हैं, तो कविता मेरे प्राण है, मेरा जीवन है, मेरा सब कुछ है। कविता नहीं तो मैं नहीं। कविता, आपने पूछा कि कविता जब आप सोचती हैं या कविता लिखने का सोचती हैं, तो मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूंगी कि कोई भी कवि कविता को नहीं चुनता, कविता हमें कवियों को स्वयं चुनती है
0: जी।
1: तो ये ब्लेसिंग्स हैं जो ऑलरेडी आती हैं, हम खुद कहीं से भी उनको उपजाते नहीं है, वो हमारे पास ऑलरेडी आती हैं। और हाँ, उनमें हम ये अपनी भूमिका निभाते हैं कि हम उन लफ्जों को, उनको पिरोते हैं एक माला में, एक मोती की तरह उनको बांध देते हैं। ये ब्लेसिंग्स हैं जो आती हैं और आगे मैं उनको पिरो देती हूँ।
0: इंदु जी, आप एक शिक्षिका हैं
1: जी,
0: एक कविता सुनाइए जिसमें हम समझ पाए कि एक शिक्षिका कैसे उन बच्चों के कोमल मन को समझती है।
1: जी जरूर, मेरी एक स्वरचित कविता का भाव देखिए कि बच्चों को विदा करना कितना मुश्किल है। एक अध्यापिका होने के नाते हर साल बच्चों का एक नया, बच्चों को, नए बच्चों को पढ़ाना, उनको सिखाना, साल भर सिखाना, और जब एक रिजल्ट डे होता है तब बच्चों को विदा करना, तो उस समय जो मेरी

0: मन के भाव होते हैं बीइंग अ मदर टीचर, तो वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी, सुनिएगा। अपनी झोली के महकते फूल किसी और को देना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी हर साल हर बार ये फर्ज निभाती हूँ। हाँ, मैं शिक्षिका ही नहीं मालिन भी कहलाती हूँ। रंग बिरंगे प्यारे, कुछ बातुनी और कुछ न्यारे, झगड़ालू कुछ सौम्य से अद्भुत जिद्दी प्यारे, मेरी बगिया के सुंदर फूल महके बैर घृणा सब भूल, जिन्हें सहेजा अति प्रेम से वही हो रहे मुझसे आज दूर। कैसे भूल पाऊंगी, कैसे भूल पाऊंगी, कितना मुश्किल है ना, कितना मुश्किल है, पर फिर भी अपना फर्ज निभाऊंगी। खुशी खुशी कर विदा उन्हें मैं नई पौध लगाऊंगी, संस्कारों के जल से सींच कर नए फूल खिलाऊंगी। हाँ हाँ, बेशक है मुश्किल, पर फिर भी मैं ये फर्ज निभाऊंगी, मैं ये फर्ज निभाऊंगी, तभी तो शिक्षिका ही नहीं मालिन भी कहलाऊंगी।
1: क्या बात है, यानी कि आपने बच्चों का जो कोमल मन है उसको आप समझने की कोशिश करती हैं हर दम हर समय, ताकि आप उनको जो घर से परवरिश मिलती है
0: जी,
1: उस परवरिश में आप अपनी ओर से उनके सोच समझ में बढ़ोतरी करती हैं।
0: जी जी।
1: इंदु जी, आपसे जानना चाहेंगे कविता लेखन और इस ऐतिहासिक जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई?
0: देखिए, बात उन दिनों की है जब मैं फिफ्थ या सिक्स में पढ़ती थी, तो हिंदी में मैंने कविताएं पढ़ी बहुत से लेखकों की, और एक थी कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के
1: जी।
0: इसके अलावा भी महादेवी वर्मा जी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, निराला जी, कबीर दास जी, रहीम जी, उनके दोहे, इतनी सारी चीजें, मतलब उस छोटी सी उम्र में भी मुझे लगता था कि ये लोग कितने महान होते हैं कि इतना ऐसा कुछ लिखते हैं कि जो आज हम बीइंग अ स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं, तो एक उनके लिए एक अलग लेवल का ही सम्मान था, और एक चाह भी थी कहीं ना कहीं कि क्या कभी कि ऐसे बुक मेरी भी कभी कभी कविताएं
1: शायद होगी,
0: शायद कोई छोटा सा एक सवाल मन के किसी कोने में था, तो वही आज पनपा है और आज एक फूल बन के एक काव्य संग्रह के रूप में मेरे हाथ में है, जो अभी 2023 में ही प्रकाशित हुआ है, बुलाता है आसमान करके नाम है मेरे काव्य संग्रह का।
1: इंदु जी, मैं ये मानता हूँ कि जब हमने अपनी जिंदगी में कोई भी लक्ष्य रखा है
0: जी,
1: उसका सपना देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सपने देखते हैं वही पूरे होते हैं
0: जी।
1: तो इस हिसाब से जब पहली बार आपका कविता संग्रह है प्रकाशित हुआ
0: जी,
1: तो क्या भावना थी उस समय?
0: उस समय बस ये लग रहा था कि आजकल पांव जमी पर नहीं लगते मेरे।
1: हम इस बात पर भी आएंगे, बट उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कवि या कवित्री का दिल गहरा, कोमल और संजीदा होता है
0: जी,
1: क्या संगीत को भी उसी सहजता से लेते हैं आप?
0: यस एग्जैक्टली, संगीत तो मेरी प्राण है, जैसे मैंने आपको बताया कि कविता है तो इंदु है, तो संगीत भी ऐसा ही है। मेरा दिन की शुरुआत संगीत से और मेरे दिन का अंत नहीं बोलूंगी, क्योंकि जब मैं निद्रा में होती हूँ तब भी कहीं ना कहीं मेरे अवचेतन मन में वो संगीत, कुछ कविताएं, कुछ लफ्ज, कुछ कहानियां, कुछ दोहे, वो चलते रहते हैं।
1: आपने तो संगीत और कविता और कविता लेखन को आपस में जोड़ दिया
0: जी,
1: तो हम चाहेंगे कि आपका कौन सा ऐसा मनपसंद गीत है जो हम आपको और हमारे श्रोताओं को सुनाएं?
0: जी हाँ, वो गीत है मेरा, आज कल पांव जमीन पर नहीं लगते मेरे।
1: क्या बात है, आपने मेरे कहने से पहले ही आपने हमारे श्रोताओं के लिए इसको गुनगुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। आइए श्रोताओं, सुनते हैं इंदु जी का ये मनपसंद गीत।

0: इंदु जी, आपके जीवन में इंस्पिरेशन कौन रहा है और क्यों?
1: मेरे जीवन में इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद जी,
0: जी,
1: क्योंकि उनके जीवन से जुड़ी उनकी शिक्षाएं और उनकी जो भी स्लोगन्स जो हम लोग पढ़ते हैं, उनकी जीवनी या उनके जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं, मैंने उनको बहुत पढ़ा है
0: जी।
1: और पढ़ा ही नहीं है, मैं उनको अपने जीवन में उतारा भी है और मैं मानती भी हूँ। उनकी एक कोट है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव। तो मैं उसको, मतलब मैं उसको फॉलो करती हूँ और कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स भी हैं
0: जी।
1: क्योंकि उनका जीवन देखिए बहुत ही सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। उन्होंने सोसाइटी के लिए इतना कुछ किया कि आज भी हम 12 जनवरी को नेशनल यूथ फेस्टिवल करते हैं और उनका जन्म दिवस खूब धूमधाम से मनाया जाता है पूरे हमारे इंडिया में
0: जी।
1: तो उनसे मैं काफी इंस्पायर्ड हूँ। और देखिए कोइंसिडेंस देखिए कि जब मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की या मैंने अपना JBT बीएड हायर एजुकेशन जो भी मैंने कंप्लीट किया, हर बार मुझे स्वामी विवेकानंद जी के क्लब में ही उसका पार्ट बनी हूँ। और जब अब मैं जॉब कर रही हूँ तो वो भी सेम स्कूल है, तो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हर समय है और मैं खुद को बहुत सशक्त मानती हूँ कि उनकी ब्लेसिंग्स हैं। और शायद मैं इसी करके आज आपके सामने बैठी हुई हूँ और आपसे बातचीत कर रही हूँ।
0: मैं चाहूंगा कि जो आपने उनका एक कोट मेंशन किया
1: जी,
0: आप प्लीज उस कोट को दोबारा कहिए।
1: जी जरूर। Arise, awake and stop not till the goal is achieved।
0: सभी श्रोताओं और युवाओं को मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी जिंदगी में लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप बनाइए और जब तक हम उसको प्राप्त नहीं करते, आप निरंतर उसके लिए काम करते रहिए। और मेरा विश्वास है कि जब हम उस काम को निरंतर करते रहते हैं तो उस लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं। बहुत खूब। और इंदु जी, यहाँ पर आप कोई कविता हमें, हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे?
1: जी जी जरूर। मैं सशक्त हूँ, नारी हूँ, तो जाहिर सी बात है कि नारी के बारे में जरूर बोलूंगी
0: जी।
1: कि कोमल हूँ पर निर्बल नहीं, साहसी हूँ पर दुर्बल नहीं, लक्ष्मी हूँ और दुर्गा भी हूँ, शाश्वत रूपिणी शक्ति में हूँ, सहनशील और धैर्यवान भी, ओजस्वी और विदुषी भी मैं, मुक्त हूँ हर छल कपट से, ममत्व प्रेम का अथाह सागर हूँ मैं, भाव हूँ और अभिव्यक्ति भी हूँ, किरण पुंज सूर्य की चिरकाल से अभ्यासरत हूँ, कर्मशील प्रयासरत वचनबद्ध सृष्टि के सृजन में, हर दायित्व अपना निभाऊंगी, शनै शनै उभरूंगी मैं, शनै शनै उभरूंगी मैं, हर शय में यूं बिखरूंगी मैं, हो ये धरा या वो गगन चहु और होगा गान ये, हो ये धरा या वो गगन चहु और होगा गान ये, कोमल है तू निर्बल नहीं, साहसी है तू दुर्बल नहीं, कोमल है तू निर्बल नहीं, साहसी है तू दुर्बल नहीं, हाँ मैं सशक्त हूँ।
0: क्या बात है इंदु जी। मैं चाहूंगा कि इस कविता के माध्यम से जो आपने, जो संदेश आपने देना चाहा, मैं चाहूंगा कि इसी कविता को सामने रख के आप हमारी जो नारी समूह है
1: जी,
0: उनको
1: जी,
0: आप क्या संदेश देना चाहती हैं?
1: उनके लिए एक बहुत ही सुंदर भाव है मेरा
0: जी,
1: जिसका शीर्षक है जज्बा बरकरार रखिए। कि हाँ आप खास हैं, बस यही एक जज्बा बरकरार रखिए
0: जी।
1: कि हाँ आप खास हैं, बस एक यही जज्बा बरकरार रखिए, गमों में भी मुस्कुराने का एक अलग अंदाज रखिए, गमों में भी मुस्कुराने का एक अलग अंदाज रखिए, किसी को हो या ना हो आप खुद पे एतबार रखिए और बेहिसाब रखिए
0: जी।
1: आप खुद पे एतबार रखिए और बेहिसाब रखिए, बेशक बहे आंसू आंखों से, बेशक बहे आंसू आंखों से, पर फिर भी मुस्कुराहट को अपने होंठों का पहरेदार रखिए, पर फिर भी मुस्कुराहट को अपने होंठों का पहरेदार रखिए, आप खास हैं, बस एक यही जज्बा बरकरार रखिए।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। और हमारा भी मकसद यही है, FM 90 भी हमेशा कोशिश करता है कि जो हमारी नारी शक्ति है उनको समय दिया जाए, उनको मौका दिया जाए, ताकि वो अपने समाज में जितना भी वो देते हैं उससे भी ज्यादा वो समाज को दे पाएं, अपने घर को दे पाएं, अपने बच्चों को दे पाएं। और अगर हमारा युवा सक्षम है तो हमारा देश भी सक्षम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इंदु जी
1: जी।
0: हम सबका जीवन और एक कवित्री का जीवन में साधारण था। आसपास क्या घटित हो रहा है, कितना आवश्यक है?
1: बहुत आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है जितना सांस लेना आवश्यक है। देखिए, समाज में, हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में जो भी घटित हो रहा है, उसको एक सच्चे लफ्जों में और उसको सही तरीके से आम आवाम के सामने लाना बहुत जरूरी है। और ये काम एक लेखक का ही है, एक कवि का ही है, क्योंकि वो अपने लफ्जों के जरिए ही अपनी चीजों को, अपनी बातों को समाज तक पहुंचाता है।
0: अपने शब्दों के जरिए वो लोगों तक अपनी बात को पहुंचाता है।
1: और बहुत जरूरी है ये,
0: यानी कि ऑब्जर्वेशन
1: बहुत जरूरी है।
0: मैं एक कलाकार हूं और कलाकार भी हमेशा जब भी वो घर से निकलता है वो ऑब्जर्व हर कोई चीज करता है, तभी वो अलग अलग किरदार निभा सकता है
1: जी।
0: पर कवि या कवित्री इतने सारे किरदार निभाते हैं जो अनगिनत होते हैं, क्योंकि जहां पर उसका ध्यान जाता है और उसी पर वो लिखना शुरू करता है। जब रेडियो वितस्ता FM 90 के साथ आपका संपर्क हुआ
1: जी।
0: या हमारे साथ संपर्क हुआ
1: जी।
0: क्या एक कवि का मन वहां पर आया कि आपने क्या हमारे बारे में या हमारे FM 90 के बारे में भी कुछ लिखा?
1: यस ऑफ कोर्स सर, जैसे कि एक हुनर है मुझ में कि चेहरे के साथ साथ मैं लोगों के रूह को भी पढ़ लेती हूँ।
0: बहुत खूब।
1: तो आपसे मेरी सिर्फ बात ही हुई थी, अब तक मैं आपसे मिली नहीं थी
0: जी।
1: तो बस ये यमुनानगर से अम्बाला तक आते आते बीच रास्ते में बस ये कुछ ख्याल आए हैं।
0: अच्छा, इसका सृजन अभी हुआ है?
1: जी हाँ जी हाँ। तो सुनिएगा कि क्या गजब ख्वाब दिखाते हैं आप
0: जी।
1: कि क्या गजब ख्वाब दिखाते हैं आप, संघर्षरत लम्हों को भी खुशनुमा बनाते हैं आप। के संघर्षरत लम्हों को भी खुशनुमा बनाते हैं आप, विभिन्न प्रतिभाओं को वितस्ता के जरिए, विभिन्न प्रतिभाओं को वितस्ता के जरिए जनता से रूबरू कराते हैं आप।
0: क्या बात,
1: यूं ही थोड़े ना भरत जी कहलाते हैं आप।
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि इससे बड़ा इनाम आज तक मुझे इस सफर में नहीं मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया जनाब।
0: इंदु जी, आप एक माँ है, शिक्षिका है
1: जी।
0: बच्चे आपके मन को कैसे अपने जैसा बना लेते हैं? कोई कविता इस संदर्भ में हमारी श्रोताओं को आप कृपया सुनाइए।
1: जी हाँ, जैसे कि मैं एक शिक्षिका हूँ और माँ भी हूँ, तो ये बात है उन दिनों की, मेरा छोटा बेटा काफी बीमार हो गया था
0: जी,
1: हॉस्पिटलाइज था
0: जी।
1: और काफी बीमार हो गया था, तो उस दौरान भी मुझे कुछ लफ्ज, कुछ भावनाएं उमड़ रही थी जिन्होंने मुझे चारों ओर से घेर रखा था। एक, क्योंकि मैं एक अध्यापिका भी हूँ तो मुझे अपना वर्क प्लेस भी देखना था, वहां भी बच्चों को देखना है, और एक मेरा अपना बच्चा जो जूझ रहा है मुझे उसे भी देखना था। लाइक दिस कि मुझे दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना था, एंड आई डिड नाइसली बोथ जॉब्स। लेकिन उस दौरान एक भाव आया, उसे सुनिएगा कि रो मत। एक माँ का भाव देखिएगा कि वो किस तरह खुद को भी स्ट्रांग कर रही है और अपने बच्चे को भी स्ट्रांग कर रही है। कि रो मत, रोने से अगर कम हो जाता दर्द तो रो लेती मैं भी
0: जी।
1: रो मत, रोने से अगर कम हो जाता दर्द तो रो लेती मैं भी, हौसले से ही जीते जाते हैं हो जंग या फिर दर्द कोई। हौसले से ही जीते जाते हैं हो या जंग कोई या दर्द कोई, रो मत वरना फिर मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगी। रो मत वरना फिर मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगी, क्या संभालूंगी तुझको जब खुद ही ना संभल पाऊंगी, क्या संभालूंगी तुझको जो खुद ही ना संभल पाऊंगी। सहन कर इस दर्द को, सहन कर इस दर्द को, तुझको जो यूं डरा रहा मत टेक घुटने आगे इसके, यूं ही तू है बहादुर बहुत, मिलकर हराएंगे इस दर्द को। तू है बहादुर बहुत, मिलकर हराएंगे इस दर्द को, आथाम हाथ मेरा।
0: क्या बात,
1: आथाम हाथ मेरा, मैं तो छीन लाऊंगी तुझे यम के पास से भी, मैं तो छीन लाऊंगी तुझे यम के पास से भी, बस अब रो मत, रोने से गर कम हो जाता तर तो रो लेती मैं।
0: क्या बात है इंदु जी, हम नमन करते हैं आपको, एक माँ को, क्योंकि माँ ही हमारी सृष्टि की जननी है, और जब वो इतनी स्ट्रांग है तो उसके आसपास का जो माहौल है वो कितना स्ट्रांग होगा, सक्षम होगा, इसका हम अंदाजा कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कविता के लिए। और अब एक और गीत की गुंजाइश है हमारे पास, हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता आपका एक और मनपसंद गीत सुने। उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका मन पसंदीदा सिंगर यानी कि गायक कौन है?
1: मेरे मन पसंदीदा सिंगर हैं सतिंदर सरताज जी, पंजाबी सिंगर हैं
0: जी।
1: और उनकी हाल ही में पीछे शायर मूवी आई थी
0: जी,
1: तो उसे मैंने देखा और उसका एक गाना है कोई तेरे नाल मोए पुराना तू मन आना मन ही। और वो जिस भाव से वो लिखते हैं ना, बहुत नेचुरल लिखते हैं और इतना मतलब ठहर के लिखते हैं कि मतलब सीधा रूह को स्ट्राइक करता है। उनको मैं इतना सुनती हूँ, उनको पढ़ती हूँ और मैं उनसे मिलना भी चाहती हूँ।
0: मैं चाहूंगा कि आप इस गीत को एक बार फिर गुनगुनाएं
1: जी,
0: ये सोच के कि जैसे सतिंदर जी गा रहे हैं।
1: वाह।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम काव्य गोष्ठी और हमारे साथ हैं शिक्षा विद्वान और कवित्री श्रीमती इंदु शर्मा जी। इंदु जी, आप कविता के साथ साथ क्या लिखना पसंद करती हैं?
1: सर, कविता के साथ साथ मैं शॉर्ट स्टोरीज जैसे लघु कथाएं, दोहे
0: जी,
1: ये सब भी मैं लिखना पसंद करती हूँ।
0: तो हमारे श्रोताओं को आप कुछ आपके लिखे हुए जो दोहे
1: जी, जी,
0: वो सुनाएं, क्योंकि दोहा हमारे समाज में, हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में एक बहुत बड़ा रोल करता है, जो कुछ शब्दों में बहुत कुछ बता देता है।
1: जी जी, तो ये दोहा मेरा है, पहले तो मन के भाव पे है कि तृष्णा मिटे न मन की, मिट मिट गयो शरीर। तृष्णा मिटे न मन की, मिट मिट गयो शरीर, ऐसो वैरी मन बाबरो, ऐसो वैरी मन बाबरो, हर पल रहे अधीर।
0: क्या बात,
1: तो ये तो
0: इसका आप कुछ अर्थ भी बता सकते हैं?
1: अर्थ ये है कि देखिए, जो हम लोग हैं, तृष्णा मीन्स चीजों के पीछे कामनाएं, इच्छाएं, हमारा लालच कभी भी खत्म नहीं होता। शरीर मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं इंसान, लेकिन तृष्णा जो भूख है वो कभी भी नहीं मिटती है
0: जी।
1: और मन जो है हमारा, सबसे मन जो है इतना चंचल है, इतना बावरा है, पागल बना के रखता है, मतलब वो हर समय अधीर रहता है। अगर एक इच्छा पूरी होगी तो अब मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, तो इस पर है ये दोहा। इसके बाद है प्रेम पर है
0: जी।
1: सच्चे प्रेम का मतलब एक रूप दिखाता हुआ, एक आईने की तरह बोल लीजिए कि देह की देहरी सब टपे, मन की टपे न कोई। देह की देहरी सब टपे, मन की टपे न कोई, जो मन की देहरी टपे सो सच्चा प्रेमी होए। इस दोहे में मैंने ये भाव दिए हैं कि सच्चा प्रेम क्या है
0: जी?
1: ये आपके जो बाहरी व्यक्तित्व है ये उसको नहीं दर्शाता। सच्चा प्रेम वो है जो किसी की आत्मा, किसी के मन के अंदर आप समा जाओ, या कोई आपकी आत्मा आपके मन में कोई समा जाए, वो सच्चा प्रेम है अकॉर्डिंग टू मी। और एक और है कि रंग खरा एक प्रेम का, दूजा रंग ना कोई। रंग खरा एक प्रेम का, दूजा रंग ना कोई। यूं तो रतन अनेक हैं, यूं तो रतन अनेक हैं, पर मोती सा ना कोई।
0: क्या बात,
1: इकट्ठा इनका एक मैंने भाव दिया है कि हर रंग में प्रेम का रंग जो है वो सबसे अनुपम है, उससे बढ़कर कोई भी रंग नहीं है जीवन में। और ऐसे तो अनेक मोती हैं आजकल
0: जी,
1: अनेक रत्न हैं
0: जी
1: इस पूरे संसार में, लेकिन मोती जैसा रत्न
0: कोई
1: नहीं है।
0: क्या बात है, कवि या कवित्रियां
1: जी
0: प्रेम के ऊपर ही लिखती हैं
1: जी,
0: या समाज में जो आसपास हमें दिख रहा है उस पे लिखती हैं, या बच्चों पर। तो आपका जो मेन सब्जेक्ट रहता है, क्या वो एक ही है या कुछ भी जो आपके सोच या आपके ऑब्जर्वेशन में आता है?
1: देखिए, मैं शिक्षिका हूँ और नारी हूँ, तो आप ये समझ सकते हैं कि जीवन के हर रंग, सुख दुख, हर पहलू, हर छोटी छोटी चीजों को मैं बारीकी से लेती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, और हर जीवन के हर रंग पर मैं अपनी कलम को आजमाती हूँ, और मैं हर लम्हे पर हर चीज को देख कर बारीकी से उस पर लिखती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही रंग है, ढेरों रंग है जीवन के, और मैंने अपने जीवन के हर छोटे छोटे लम्हों को कविताओं में पिरोया है।
0: बहुत अच्छी बात है, यानी कि आने वाले दिनों में जब आपके पास समय होता होगा, आप अपना कविता संग्रह पढ़ेंगे, तो आप उन पुरानी यादों को एक बार फिर याद करते होंगे। आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपका कविता संग्रह प्रकाशित हुआ
1: जी,
0: तो उस समय कैसा आपको लगा, और उसके लिए आपने कितनी सारी मेहनत करी, और कवि है या कवित्रियां हैं
1: जी,
0: उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जब एक कविता लिखना शुरू हो जाता है तो वहीं से ही एक कविता संग्रह की शुरुआत होती है, तो आप प्लीज बताइए।
1: सर, बात ऐसे है कि जब मैं कविताएं लिखती थी, मुझे विचार आते थे तो मैं उनको संजोती थी, लिखती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं हमेशा से ना एक छोटा सा डर था अंदर कि शायद तब तक मैंने खुद को नहीं पहचाना था कि मैं क्या हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ सोसाइटी के लिए
0: जी।
1: तो मुझे एक डर रहता था कि खुद को, मैं कहती थी कि मेरे पास जैसे डायरीज हैं तो मैं उनमें लिखती थी जो भी ख्याल आते, तो मैं खुद को कहती थी कि इंदु तू ये लिख तो रही है पर पता नहीं ये कहीं यूजलेस ना हो, ऐसे ही पड़े रहेंगे, किसे पता चलेगा कि तुमने इतना अच्छा लिखा है, क्योंकि देखिए माँ को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, वैसे एक लेखक को उसका हर लफ्ज बहुत अजीज होता है। तो मुझे भी ये लगता था कि मैं लिख तो रही हूँ, हर रोज लिख रही हूँ, लेकिन जब भी मुझे ख्याल आ रहा मैं लिख रही हूँ, लेकिन क्या कभी, मतलब वो सवाल भी पूछते डर लगता था मन को। लेकिन हुआ यूं कि कोरोना काल के दौरान मेरे खुद को काफी समय मिला, तो उस दौरान कुछ और कविताएं बहुत अच्छे से आई, और जो मैंने ऑलरेडी लिखी थी उनको मैंने फिर से पढ़ा, मैंने उनको फिर से एडिट किया, बार बार उनको पढ़ा, अपने पतिदेव को सुनाया। मेरे पार्टनर बहुत अच्छे हैं तो वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें सुनाया और बार बार उनको एडिट किया, जहां मुझे लगा कि नहीं ये हल्का शब्द है, थोड़ा सा इसका रिदम ताल थोड़ा और अच्छा हो सकता है, यहाँ ये लफ्ज होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, तो वो एडिट किया। कहीं से मुझे, किसी फ्रेंड से मुझे एक प्रकाशक का नंबर मिला, तो नूर साहब जी, उन्होंने मतलब प्रोत्साहित भी किया कि बहुत अच्छी बात है, इतनी छोटी एज में आप उस तरफ जा रहे हो और आपके पास इतनी सारी बल्क में यू हैव मतलब मोर देन 200 कविताएं आप लेकर आए। कुछ बारीकियां भी उन्होंने समझाई और उन्होंने इसमें हेल्प की कि मेरी एक पुस्तक का रूप देने में, काव्य संग्रह के रूप में मेरी पुस्तक को लाने में उन्होंने मदद की, अशोक नूर साहब जी जो जगाधरी के हैं, वो भी एक प्रख्यात प्रोफेसर हैं और शायर हैं, नज़्म और गजल लिखते हैं।
0: आपने अपनी बातों में अभी अपने पतिदेव जी की बात की
1: जी,
0: आमतौर पर हमने देखा है कि कोई शायर है
1: जी,
0: जब वो कोई शायरी लिखता है या लिखती है
1: जी जी,
0: तो वो हमें पकड़ के कहते हैं कि आप मेरे ये शेर सुनो, और जबकि हम भागने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में जो आपके हस्बैंड है
1: जी,
0: जब आप उनको अपनी कविता सुनाते हैं
1: जी जी,
0: तो क्या रिएक्शन रहता है उनका?
1: उनका रिएक्शन बहुत अच्छा रहता है, टचवुड, वो एक गुरु की तरह है, वो मतलब मैं उनकी छाया हूँ, मैं कुछ भी नहीं उनके बिना। उन्होंने आफ्टर मैरिज, मैं मैरिज से पहले मेरी सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट थी
0: जी,
1: और आफ्टर मैरिज उन्होंने मुझे मेरी हायर एजुकेशन कंप्लीट करवाई, और अभी भी मुझे सपोर्ट करते हैं, अभी भी लाइफ में मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ और वो हमेशा मेरे साथ हैं, वो दो कदम आगे और दो कदम पीछे, मेरी साइड्स हर तरफ वो मेरे साथ रहते हैं। और जब भी मैं कोई कविता लिखती हूँ तो सबसे पहले मुझे होता है कि मैं उन्हें कहीं भी वो मेरे पास हो ना हो कि उन्हें सुनानी है, तो उसमें एडिटिंग करना, उसको सुनना, उसमें सुधार करना, वो मेरे गुरु हैं, वो हर समय मेरे साथ, इतना मैं खुद को नहीं सपोर्ट करती जितना वो मुझे सपोर्ट करते हैं।
0: क्या हम माने कि वो आपकी कविताओं के क्रिटिक भी है?
1: यस ऑफ कोर्स, वो मुझे बोल देते हैं कि ये क्या लिखा है तुमने, यहाँ तो ऐसे होना चाहिए था।
0: तो मेरा तो मन कर रहा है कि सुशील जी
1: जी
0: हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूंगा उनकी भी राय लूं। सुशील जी आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। जब इंदु जी आपको अपनी कविताएं सुनाती हैं, तो आपके भाव क्या होते हैं? आप दिल से सुनते हैं या उसमें दिलचस्पी लेते हैं, और हमारी श्रोताओं को और अपकमिंग जो पोइट या पोइटेस हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
2: नमस्कार भरत जी, जैसे कि आपने कहा कि इंदु जी आपको कविताएं वगैरह सुनाते हैं, पहले तो कुछ अजीब सा लगता था
0: जी,
2: लेकिन अब सुनते सुनते ऐसा लगता है कि वो जीवन का हिस्सा बन गया है
0: जी,
2: और सुनने में अच्छी लगती है। जब से ये बुक आई है तो लगता है कि हाँ ये कुछ कर पा रही है
0: जी,
2: कुछ कर रही है
0: जी।
2: बाकी रही सुधार की बात, तो ये होता है कि सुनते सुनते थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें ये लिखना चाहिए, ये थोड़ा सा बताना चाहिए। और बाकी मैं नई उभरती हुई जो लेखिकाएं हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप भी लिखिए, अच्छा लिखिए, और उनके परिवार वाले उनका सपोर्ट करें कि वो भी एक अच्छी लेखिका बन
0: पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय दी, और ये हमारे श्रोताओं के लिए भी एक सीखने समझने की बात है। और आखिर में मैं पूछना चाहूंगा, इंदु जी के साथ साथ क्या हम ये उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में सुशील जी भी एक शायर बनेंगे और उनका भी एक कविता संग्रह आ जाए?
2: नहीं नहीं, इंदु जी ही बहुत है जी, एक ही शायर, एक म्यान में एक ही तलवार रहती है जी, तो उसी को रहने दीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
2: धन्यवाद जी भरत जी, आपने हमें बुलाया और इतने सुनहरे पलों को जीने का एहसास करवाया, और ये हमें आज बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके। पहले हम ये मोबाइल पे टीवी पे देखते थे कि क्या स्टूडियो होता है, आपने सारा हमें दिखाया कैसे क्या होता है, कैसे ये रेडियो का ये होता है, हम तो सिर्फ सुनते थे, आज हमें देखने का बोलने का ये मौका मिला, ये बहुत अच्छा और बहुत यादगार पल है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। कार्यक्रम का इंदुजी समय जो है वो समाप्त होने को है, मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने गुरुजन के लिए क्या कहना चाहेंगे।
1: मैं अपने गुरुजनों को तहे दिल से उनका शुक्रिया आभार प्रकट करना चाहूंगी। तो गुरु तो देखो हर समय आपके आस पास चारों ओर गुरु है, तो मैं समझती हूँ कि गुरुओं की ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी हैं और मैं भी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे जीवन में बहुत से गुरु हैं जिनकी ब्लेसिंग्स हैं और उन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से आज जीवन में मैं आगे कुछ कर पा रही हूँ और बहुत कुछ अभी करना बाकी है। तो उम्मीद करती हूं।
0: हम उम्मीद करते हैं और हम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं, आपको इस सफर में कामयाबी मिले और आपके बहुत सारे कविता संग्रह आए, और जब भी आपका कविता संग्रह आए आप हमारे पास भेजें, हम भी उन कविताओं को अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। आखिर में क्या आप हमें कोई अंत में कोई कविता सुनाना चाहेंगे?
1: जी जरूर, एक प्रेम रस पर है
0: जी।
1: एक अल्हड़ अपने प्रियतम के लिए कुछ भाव लिए हुए कि ढलते ही सूरज के आगोश में तेरे घर कर जाऊं, कि ढलते ही सूरज के आगोश में तेरे घर कर जाऊं, आ तुझ में मैं तुझ में तुम होकर रह जाऊं, कि आ तुझ में तुम होकर रह जाऊं, कुछ और नहीं ख्वाहिश बस इतनी सी मेरी, कांधे पे तेरे रख सर अपना, अब मैं भी चैन की नींद सो जाऊं, जब सब गुजरे और हो सहर, फिर बन सूरज की पहली किरण, बिखरूं आंगन में तेरे उजाले से तेरा जीवन भर दूं, संग रहूं तेरे बन साया, खुशियों से तेरा मैं घर भर दूं, और फिर ढलते ही सूरज के आगोश में तेरी घर कर जाऊं, आ तुझ में तुम होकर रह जाऊं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। और इसी कविता के साथ हम इस कार्यक्रम का करते हैं समापन। इंदु जी आपका और सुशील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आमंत्रण पर यहाँ आने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, अपनी कविता पाठ करने के लिए। हम आपके आभारी हैं और हम ये चाहते हैं कि आपके दिन अच्छे हों।
1: रेडियो वितस्ता के सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और भरत जी का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया और मुझे अपनी कविताएं आपके साथ साझा करने का ये सुनहरे पल दिए। तो मैं इनको भी ढेरों शुभकामनाएं दूंगी कि दिन प्रतिदिन इनकी भी जो उन्नति है वो परमेश्वर चाहें और करें, और हम भी समय समय पर आप लोगों के साथ अपने विचार साझा करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।
0: और रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

come true for you. How you gonna make a dream come true?

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

0: तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
2: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: 90.0 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।
1: ब्रदर, आम आई रेडी? 1, 2

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए शब्बीर कुमार के दिल छूने वाले गाने हमारे FM 90.0 MHz पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: रहो अपने पसंदीदा की।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर
3: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

सुनें अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।
4: 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। हम लेके आए हैं आपके लिए आज के कृषि समाचार।
2: नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा।
1: 5 जिलों में खजूर की खेती का ट्रायल शुरू। सेम ग्रस्त और बंजर भूमि पर ले सकेंगे उत्पादन। प्रति एकड़ 5 से 6 लाख रूपए तक आमदनी ले सकेंगे। रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। केंद्रीय मृदा लावंदा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने हरियाणा के करनाल, कैथल, हिसार, सोनीपत और महेंद्रगढ़ जिलों में खजूर की खेती का ट्रायल शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य खजूर के आयात पर निर्भरता कम करना और स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देना है। प्रदेश की गर्म और शुष्क जलवायु इस फसल के लिए उपयुक्त मानी जा रही है, जिससे इसके फसल होने की संभावना बढ़ जाती है। करनाल स्थित संस्थान में बरही किस्म के टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे लगाए गए हैं। एक एकड़ में लगभग 64 पौधे रोपे जा सकते हैं और एक परिपक्व पेड़ से 100 से 120 किलोग्राम तक उत्पादन मिल सकता है। इन पौधों की आयु लंबी होती है और वे लगभग 100 वर्षों तक फल देते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 2028 तक इन पौधों पर फल आना शुरू हो जाएगा और 5 से 7 वर्षों में किसान प्रति एकड़ 5 से 6 लाख रुपए तक की आय अर्जित कर सकेंगे। इस खेती में पानी और खाद की आवश्यकता भी कम होती है, जिससे लागत घटती है। हरियाणा में बड़ी मात्रा में भूमि लावण प्रभावित है, ऐसे में ये प्रयोग बंजर भूमि के उपयोग और मिट्टी सुधार में सहायक होगी। भविष्य में खजूर आधारित प्रोसेसिंग उद्योग और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आयात पर निर्भरता घटने से किसानों को सीधा लाभ होगा। भारत हर साल करीब 5 लाख टन खजूर विदेशों से आयात करता है, जिसकी कीमत 2200 करोड़ रुपए से अधिक होती है। यह खजूर मुख्य रूप से सऊदी अरब, यूएई, इराक और ईरान जैसे देशों से आता है। यदि हरियाणा सहित अन्य राज्यों में खजूर उत्पादन बढ़ता है तो किसान को सीधा लाभ मिलेगा। पर्यावरण संतुलन में सुधार होगा। खजूर का पौधा सामान्य भूमि के अलावा लवणीय और कम उपजाऊ मिट्टी में भी आसानी से पनप सकता है। इसकी जड़ें गहराई तक जाकर पोषक तत्व लेती हैं। जहां पारंपरिक फसलें असफल हो जाती है, वहां खजूर बेहतर विकल्प बन सकता है। इससे बंजर पड़ी जमीन का उपयोग बढ़ेगा और पर्यावरण संतुलन में भी सुधार होगा। कम लागत ज्यादा मुनाफा। खजूर की खेती में सिंचाई और उर्वरकों की जरूरत कम होती है, जिससे लागत घटती है। पौधों की लंबी उम्र के कारण बार बार रोपण की आवश्यकता नहीं होती है, बार बार जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। शुरुआती निवेश के बाद कई वर्षों तक लगातार उत्पादन मिलता है। यही कारण है कि इसे दीर्घकालिक और स्थिर आय का स्रोत माना जा रहा है। देश की लावणग्रस्त मृदाओं में खजूर एक बेहतर विकल्प है। केंद्रीय मृदा लावणता अनुसंधान संस्थान ने प्रदेश के 5 जिलों में ट्रायल शुरू किया है। 2028 से उत्पादन की उम्मीद है। इस खेती से किसानों की आय बढ़ेगी और देश की विदेशी खजूर पर निर्भरता कम होगी। डॉक्टर राजकुमार जागलान, वरिष्ठ वैज्ञानिक, केंद्रीय मृदा लावणता अनुसंधान संस्थान, करनाल। गर्मी में भी ले मूली का उत्पादन, 40 से 45 दिन में होगी तैयार। पूसा चेतकी देसी किस्म अधिक तापमान में भी देती है अच्छी पैदावार। मूली सामान्यतः शरदकालीन फसल है, लेकिन उन्नत तकनीक से इसे गर्मियों में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। होटल और ढाबों में सलाद के रूप में इसकी अधिक मांग होने से किसान बेमौसमी उत्पादन कर अच्छी आय कमा सकते हैं। सब्जी विज्ञान विभाग MHU करनाल के डॉक्टर सुरेश कुमार अरोड़ा के अनुसार गर्मियों में मूली उगाने के लिए ताप सहनशील किस्मों का चयन जरूरी है। पूसा चेतकी ऐसी ही देसी किस्म है जो अधिक तापमान में भी अच्छी पैदावार देती है और 40 से 50 दिनों में तैयार हो जाती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पहली गुड़ाई 2 से 3 सप्ताह बाद मिट्टी चढ़ाना लाभकारी रहता है। फसल की खुदाई भी 40 से 45 दिनों में की जा सकती है। प्रति एकड़ लगभग 60 क्विंटल उत्पादन संभव है। इस किस्म के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ पर्याप्त होता है, जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिल सकता है। 3 से 4 बार जमीन की गहराई जुताई और 5 से 7 बार सिंचाई करें। भूमि की तैयारी, खेत को बिजाई से पहले समतल करना चाहिए। खेत की 3 से 4 गहरी जुताई करनी चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाएं। गोबर की खाद को भी खेत की तैयारी करते समय अच्छी तरह से मिट्टी में मिला देना चाहिए। खाद एवं उर्वरक, 20 टन गोबर की खाद प्रति एकड़ जुताई करते समय डालनी चाहिए। लगभग 24 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 46 किलोग्राम किसान खाद 25% व 12 किलोग्राम शुद्ध फास्फोरस यानी 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ की दर से देना चाहिए। सिंचाई, ग्रीष्म ऋतु की मूली में 5 से 7 बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। पानी डोलियों के 3/4 भाग से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद की सिंचाई मौसम और भूमि की नमी के अनुसार 7 से 8 दिन के अंतर पर करनी चाहिए। बिजाई का समय, पूसा चेत की किस्म की बिजाई का उत्तम समय मार्च से जुलाई का महीना है। मूली की लगातार फसल लेने के लिए 15 से 20 दिन के अंतराल पर बिजाई करते रहें। मूली का उत्पादन अगस्त तक लिया जा सकता है। बिजाई की विधि, बिजाई हल्की डोलियों यानी मेड़ों पर करनी चाहिए। डोली का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर और पौध का 6 से 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। डोलियों की चोटी पर 2 से 3 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाकर बीज बोना चाहिए।
2: गन्ने की फसल को स्केल कीड़ा, मोथा घास, काली चींटी से बचाएं। बिजाई के 40 दिन बाद पहला पानी लगाएं। गन्ने की फसल में मोथा घास, स्केल कीड़ा और काली चींटी नुकसान पहुंचा सकती हैं। बचाव के लिए किसानों को प्रबंध करने चाहिए। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर B.R. कांबोज ने बताया कि यदि मोथा घास दोबारा उग जाए तो दवाई की इसी मात्रा का फसल में छिड़काव करें। 2-4 डी मोथा घास को ऊपर से ही नष्ट करती है। मोथा घास की रोकथाम के लिए चैंपा 75%, हेलोस्फुरियान का 36 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोलकर बिजाई के 35-45 दिन बाद पहली सिंचाई के 2-3 दिन बाद जब मोथा घास 3 से 5 दिन की हो तब फ्लैट फैन नोजल से छिड़काव करें। बिजाई के लगभग 40 दिन बाद पहला पानी लगाएं। बत्तर आने पर गुड़ाई करें। यदि बिजाई के समय एट्रोजिन नहीं डाल पाए हो तो पहली सिंचाई के बाद गुड़ाई करके 1.6 किलोग्राम एट्रोजिन 50 घुप्पा प्रति एकड़ की दर से 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर खड़ी फसल में छिड़काव करें। इससे गन्ना फसल पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। कीड़ा ग्रस्त पत्तियों और फुटाव को नष्ट कर दें। स्केल कीड़ा के फैलाव को रोकने के लिए बीज ऐसी फसलों व क्षेत्रों से ना लें जहां कीड़ों का प्रकोप हो। कीड़ा ग्रस्त क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्र में गन्ना बिजाई के लिए नहीं ले जाना चाहिए। काटने के बाद सभी पत्तियों व नए फुटाव को खेतों में नष्ट कर दें। कीटाग्रस्त क्षेत्रों में एक से अधिक मौड़ी फसलों में काली चींटी के नियंत्रण के लिए छिड़काव करें। खरपतवारों नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम 2-4D 80% सोडियम नमक 250 लीटर पानी में बिजाई के 7-8 सप्ताह बाद प्रति एकड़ छिड़काव करें। फसल में मोथा घास डीला की समस्या हो तो घास उगने पर 2-4D ईस्टर का 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। फरवरी व मार्च में बोई गन्ने की फसल में 45 किलोग्राम यूरिया डालें।
1: ये थे आज के कृषि समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको इन कृषि समाचारों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास भी कोई कृषि समाचार है तो आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि हम बाकी किसान भाइयों तक उस जानकारी को लेके जा सकते हैं। आप हमें लिख सकते हैं हमारे नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010।
2: इसी के साथ मुझे भी दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।
1: जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे, घर परिवार का ध्यान रखेंगे और खुशहाल रहेंगे और उन्नत रहेंगे। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।

0: खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।
1: सही रास्ता सही चुनाव सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++ CGPA 3.72
1: कोर्सेज 22+ UG PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस वाईफाई मॉडर्न लैब्स स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। समय समय पर हम आपके साथ अलग अलग योजनाओं के बारे में बात करते हैं जो भारत सरकार की ओर से हमारे देश के सभी देशवासियों के लिए होती है। आइए आज हम आपको जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। किसानों को 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए देती है सरकार। किसानों की आय बढ़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से दिए जा रहे हैं। राशि 4-4 महीनों के अंतराल में 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है। ये दस्तावेज जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ दस्तावेज जरूरी है। किसान का नाम, आयु, लिंग, श्रेणी, SC/ST, आधार कार्ड, जमीन की फरद, पहचान पत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड या केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार या उनके अधिकारियों आदि द्वारा जारी किए गए किसी भी पहचान दस्तावेज आदि, बैंक खाता संख्या और लाभार्थी का मोबाइल नंबर। ऐसे ले सकते हैं लाभ। योजना का लाभ लेने के लिए किसान pmkisan.gov.in यानी pmkisan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर योजना का लाभ खाते में प्राप्त होता है। किसान यह आवेदन कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSS से भी करा सकते हैं। पात्र किसान पटवारी, राजस्व अधिकारी या अन्य नामित अधिकारी एजेंसी के पास जरूरी विवरण प्रस्तुत कर आवेदन कर सकते हैं। ये व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं है। इस योजना में कुछ लोग शामिल नहीं हो सकते। इनमें संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति, पूर्व या वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, नगरपालिका चेयरमैन, जिला परिषद चेयरमैन, केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी और मासिक 10,000 रुपए से अधिक पेंशन लेने वाले ग्रुप डी के कर्मचारी पात्र नहीं होंगे। पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA और आर्किटेक्ट भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं। इनके पास खेती की जमीन है तो भी सम्मान निधि का लाभ इन्हें नहीं मिलेगा। आयकर दायरे में आने वाले किसान भी योजना से बाहर रखे गए हैं। ये थी संक्षिप्त जानकारी प्रधानमंत्री किसान

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: सही रास्ता सही चुनाव सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++ CGPA 3.72
2: कोर्सेज 22+ UG PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस वाईफाई मॉडर्न लैब्स स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: सच में एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
2: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
4: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
3: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
4: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
3: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
4: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
3: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
4: www.sdcollegeambala.ac.in।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आपने ट्यूनिंग किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

नमस्कार, तुम तो बोजान रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी हूं। रेडियो वितस्ता पन्ने माजी जेव पोछर दिन खतर वक्त वक्त तुंद खतर नई प्रोग्राम तो नव जानकारी हेत हमेशा बहुत तुहद रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज चुस बुंद खतर कशर ब्रॉडकास्ट सेगमेंट्स मज नव डल हेत आमुत। आज बोजनो तुशर अफसान जन लिखमुत सानि हंद मायानाज लेखक श्री वीरेंद्र पटवारी साबन। अत अफसानस नाव पोज अपुज। वलु बोजो ये अफसान पोज अपुज अख लकुट अफसान। अमिक लेखन वल वीरेंद्र पटवारी।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुनिए उषा उठुप और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत में लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई का जाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ। हाँ मैं भी डर जाता हूँ, मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। मैं हवा में फैली अफवाह से डर जाता हूँ, मैं सैलाब ए गुमराह से डर जाता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं खुद से लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेकर मैं बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की ये सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है, हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। धन्यवाद।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनिए नितिन मुकेश और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
2: सही रास्ता सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेट A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह। हम थे

0: खेचा आ हा हा। हम थे मोती और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विद स्टार 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विद स्टार। हम सफर जिंदगी का

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 7। आज का कार्यक्रम आधारित है जाने माने गायक यशुदास पर। प्रस्तुत करेंगे आज किरनी, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी।
3: आप सुन रहे हैं 90.0 FM मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। पेश है कार्यक्रम सुनहरे पल। सभी दोस्तों को किरनी का प्यार भरा नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं एक खास म्यूजिकल सफर यशोदास के गानों के साथ। आपको लेकर जा रहे हैं एक अनोखे संगीत के सफर पर, जहां हम यशोदास के कुछ अनमोल गानों को सुनेंगे और उनकी कहानी को जानेंगे। यशोदास का जन्म 10 जनवरी 1940 में कोचीन केरल में हुआ था। उनके पिता ऑगस्टाइन जोसेफ एक मंजे हुए मंची कलाकार एवं गायक थे, जो हर हाल में अपने बड़े बेटे यशोदास को पार्श्व गायक बनाना चाहते थे। यशोदास के पिता जब वे अपने रचनात्मक कैरियर के शीर्ष पर थे, तब कोचीन स्थित उनके घर पर दिन रात दोस्तों और प्रशंसकों का जमावड़ा लगा रहता था, किंतु जब बुरे दिन आए तब बहुत कम ही लोग ऐसे थे जो मदद को आगे आए। यशोदास का बचपन गरीबी में बीता, पर उन्होंने उस छोटी सी उम्र से अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए थे और ठान लिया था कि अपने पिता का सपना पूरा करना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। उन्होंने ताने सुनने पड़े जब एक ईसाई होकर वे कर्नाटक संगीत की दीक्षा लेने गए। एक समय ऐसा भी आया कि वे अपने RLV संगीत अकेडमी की फीस भी बमुश्किल भर पाते थे। ऐसा भी दौर था जब चेन्नई के संगीत निर्देशक उनकी आवाज में दम नहीं पाते थे और EIR त्रिवेंद्रम ने उनकी आवाज को प्रसारण के लायक नहीं समझा, लेकिन जिद के पक्के उस कलाकार ने सब कुछ धैर्य के साथ सहा।

एक जात, एक धर्म, एक ईश्वर। आदि नारायण शुरू के इस कथन को अपने जीवन का मंत्र मानने वाले यशोदास को पहला मौका मिला 1961 में बनी फिल्म कला पदुकल से। प्रारंभ में उनकी शास्त्रीय अंदाज की सरल गायकी को बहुत सी नकारात्मक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा, लेकिन यशोदास ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संगीत प्रेमियों ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया, भाषा उनकी राह में कभी दीवार नहीं बन सकी।

दक्षिण के सिनेमा में अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरने के बाद यशोदास ने बॉलीवुड की ओर रुख किया। फिल्म जय जवान जय किसान के लिए पहली हिंदी गीत गाया, लेकिन पहले रिलीज हुई फिल्म छोटी सी बात उन्होंने 70 के दशक

कर्नाटक संगीत के विशेषज्ञ होने के साथ वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी कुशल है। उन्होंने सुंदर गीतों को प्रस्तुत करने के लिए दोनों कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को मिलाया। उन्होंने अपने लंबे और शानदार करियर के दौरान रूसी, अरबी, लेटिन और अंग्रेजी गाने भी गाए। 1960 के दशक के मध्य में यशोदास ने प्लेबैक गायन शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने कॉलीवुड के फिल्मों में गाना शुरू किया और कुछ समय बाद उन्होंने 1970 के दशक के मध्य के दौरान बॉलीवुड में प्लेबैक गायन भी शुरू किया। उन्होंने 7 बार सर्वश्रेष्ठ गायक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। यशोदास ने अपनी संगीत कला का पूरे विश्व में प्रदर्शन किया है। उन्होंने कर्नाटक शैली में अरबी गीतों को प्रस्तुत किया। वे असंख्य प्रदर्शनों के माध्यम से विदेशों में भारतीय संगीत को बढ़ावा देते रहे। उनके उस अद्भुत प्रयास के लिए उन्हें केरल राज्य के अस्थाना गायिकान का नाम दिया गया है। उनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1973 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

1970 में उन्होंने केरल के संगीत नाटक अकादमी का नेतृत्व किया, जो अकादमी के इतिहास में पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। डॉक्टर के जे येसुदास और उनकी पत्नी प्रभा वर्तमान में चेन्नई और फ्लोरिडा यूएसए में रहते हैं। सलिल चौधरी को येसुदास को हिंदी सिनेमा में लाने का श्रेय दिया जाता है। चौधरी की येसुदास से पहली मुलाकात तब हुई जब उन्हें राम करियात की मलयालम भाषा की फिल्म चैम्पियन के लिए संगीत तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस बारे में बहुत कम जानकारी है कि करियात ने चौधरी को क्यों चुना। चैम्पियन के बाद चौधरी मलयालम सिनेमा में भी एक जाना माना नाम बन गया। येसुदास ने चौधरी पर गहरी छाप छोड़ी। एक साक्षात्कार में येसुदास याद करते हैं कि ये चौधरी ही थे जिन्होंने पूछा था, क्या येसुदास हिंदी में गाने में रुचि लेंगे। येसुदास ने साक्षात्कारकर्ता से कहा, कौन मना करेगा। लगभग एक दशक लग गया, लेकिन चौधरी ने सुनिश्चित किया कि येसुदास की आवाज़ बॉम्बे तक पहुंचे।

जारी है कार्यक्रम सुनहरे पल। आज हम बात कर रहे हैं गायक यशोदास जी के बारे में। जाने मन के बाद बासु चटर्जी ने यशोदास को अपनी अगली फिल्म चितचोर में एक और गाना ऑफर किया, जो कि आइकनिक गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा। अनिरुद्ध भट्टाचार्य की किताब के अनुसार फिल्म के निर्माता ताराचंद ने यशोदास को गाते हुए सुना और कहा, आप उन्हें सभी गानों के लिए क्यों नहीं लेते। चितचोर में यशोदास के चारों गीत अद्वितीय हैं, जो उनकी प्रतिभा और विविधता को दर्शाते।

0: मन है पगला कहाँ से आए
1: बदरा
0: बदरा।
2: 84 साल की उम्र में यशोदास के लिए हजारों पूर्णिमाएं नहीं बल्कि 72 मेलकाटा राग और उनके अनगिनत गुण संगीत स्वर सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित करने के बाद वह इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि इस प्रयास से उन्हें इस विशाल सागर का सिर्फ एक मुट्ठी भर हिस्सा ही मिला है। वह जीवन भर संगीत के छात्र रहे हैं और इस अंतहीन खोज के आगे समय भी सम्मान से खड़ा है। डलास में अपने घर पर यशोदास अपनी पत्नी प्रभा के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं और संगीत सीखना जारी रखते हैं। थारंगनी के आधिकारिक YouTube चैनल के माध्यम से वे अभी भी नियमित अंतराल पर नए गाने जारी करते रहते हैं। यशोदास को कई सम्मान और पुरस्कार दिए गए। पद्मश्री, पद्म भूषण, राष्ट्रीय पुरस्कार 7 बार दिए गए। आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म अवार्ड 5 बार दिया गया। कर्नाटक राज्य फिल्म अवार्ड 3 बार दिया गया। केरल राज्य फिल्म अवार्ड 26 बार दिया गया। तमिलनाडु राज्य फिल्म अवार्ड 5 बार दिया गया। पश्चिम बंगाल राज्य फिल्म अवार्ड 5 बार दिया गया।
0: दिल

दोस्तों, आज हमने सुनी एक ऐसे महान गायक की कहानी जिन्होंने अपनी सुंदर आवाज से हर दिल को जीत लिया। यशोदास जी के गानों ने न सिर्फ हमें मंत्रमुग्ध किया बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध किया। उनकी आवाज में वो जादू है जो कभी भी हमें प्रेरणा देना बंद नहीं करती। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ वक्त बिताया और यशोदास जी की यादों और गानों में डूबे रहे। आशा है आपको ये सफर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए कार्यक्रम में। आप अपना फीडबैक हमें दीजिए 7056413010 पर। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 7। आज का कार्यक्रम आधारित था जाने माने बॉलीवुड गायक यशोदास पर। प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

भारतीय फिल्म इतिहास में कुछ दशक ऐसे हुए हैं जिन्हें किन्हीं खास कलाकारों की वजह से याद किया जाता है। अगर हम 1960 के दशक की बात करें तो यह दशक राजेंद्र कुमार के कारण याद किया जाता है, जिन्हें इस दौर में अपनी सुपरहिट फिल्मों की वजह से जुबली कुमार का नाम दिया गया था। उस दौर की हर अभिनेत्री की इच्छा रहती थी कि उसे राजेंद्र कुमार के अपोजिट किरदार निभाने का मौका

राजेंद्र कुमार ने फिल्मों में एचएस रिवेल के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। एचएस रिवेल ने ही आगे चलकर राजेंद्र को लेकर फिल्म मेरी महबूब का निर्माण किया, जो उस वक्त की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी।

फिल्म निर्माण के गुर सीखने के दौरान ही राजेंद्र कुमार के मन में अभिनय यानी एक्टिंग की इच्छा जागृत हुई। इसके बाद एक एक्टर के तौर पर पहली बार उन्हें दिलीप कुमार के साथ फिल्म जोगन में एक छोटा सा किरदार निभाने को मिला था। यहीं से वो लगातार कामयाबी हासिल करते गए और 1956 में उन्हें फिल्म आवाज में मुख्य किरदार निभाने का मौका मिला। उसके बाद उन्होंने महबूब खान की मदर इंडिया में एक अच्छे बेटे का किरदार निभाया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा उन्हें। यह सिलसिला जारी रहा। 1959 में गूंज उठी शहनाई ने उन्हें एक सुपरस्टार का दर्जा दिलाया।

अगले ही साल उन्होंने कानून और धूल कपूर जैसी फिल्में दी, जो लगभग गूंज उठी शहनाई के समय में ही रिलीज हुई थी। वो हमेशा अपने किरदारों के साथ प्रयोग करने के इच्छुक रहते थे, मगर फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें एक अलग तरह की इमेज में बांध कर रख दिया। 60 के दशक में उन्होंने आस्क पंछी, ससुराल, हमराही, दिल एक मंदिर, आई मिलन की बेला, जिंदगी, संगम, आरजू, सूरज जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में दी।

उनकी सफलता के चढ़ाव के इस दौर के बाद एकदम इसमें उतार आया और उनकी अमन झुक गया आसमान, पालकी, साथी और शतरंज जैसी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप साबित हुई। इसी दौरान उन्होंने गवार, गांव हमारा शहर तुम्हारा और तांगे वाला जैसी औसत दर्जे की फिल्में की, मगर उन्हें पहले जैसी कामयाबी नहीं मिली।

70 के दशक में जब राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में छाए हुए थे, तब राजेंद्र कुमार अभिनीत और राजकुमार कोहली की फिल्म गोरा और काला आई और सुपरहिट साबित।

सन 1980 के बाद राजेंद्र कुमार ने अपना पूरा ध्यान अपने बेटे कुमार गौरव का करियर बनाने के लिए दिया। 1981 में उन्होंने अपने बेटे को लेकर फिल्म लव स्टोरी का निर्माण किया जो सुपरहिट साबित हुई। उसके बाद राजेंद्र कुमार ने कुमार गौरव को लेकर नाम, जुरत और फूल जैसी फिल्मों का निर्माण किया, मगर कुमार गौरव अपने पिता की विरासत को आगे न ले जा पाए। इसका दुख राजेंद्र कुमार को साल-साल तक

राजेंद्र कुमार अपने पूरे जीवन में शायद ही कभी बीमार पड़े होंगे, पर 1999 में एक दर्दनाक बीमारी के चलते वो इस दुनियाई फानी को

उनके दौर की फिल्मों के शौकीन लोगों के लिए राजेंद्र कुमार भी उतने ही बड़े ट्रेजेडी किंग थे जितने बड़े ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को माना जाता है।

सुनते रहिए हमारी प्रसारण दिल से। अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे प्रोग्राम्स के बारे में अपनी खूबसूरत राय से हमें नवाजते रहिए। सुनते रहिए हमारी नशरियात दिल से।

रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।

क्या आप जानते हैं मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1932 को हुआ था। मीना कुमारी का असली नाम माजवीन था और माजवीन सबसे छोटी बेटी थी खुर्शीद और मधु के बाद। इनके वालिद अली बख्श गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। माजवीन की पैदाइश के फौरन बाद अपनी गुर्बत की वजह से अली बख्श ने अपनी इस छोटी लड़की को किसी मुस्लिम घराने के हवाले किया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद माजवीन को वापस अपने पास ले आए। अली बख्श की फिल्मी दुनिया से पहले ही से वाबस्तगी थी। वो शायर थे, हारमोनियम बजाने के अलावा म्यूजिक टीचर भी थे। अली बख्श ने एक छोटा सा रोल अदा किया था, फिल्म थी ईद का चांद। फिल्म शाही लुटेरा के लिए संगीत भी तैयार किया था। प्रभावती देवी अली बख्श की दूसरी पत्नी थी और मीना कुमारी की दादी हेम सुंदरी ठाकुर टैगोर खानदान से ताल्लुक रखती थी। हेम सुंदरी ठाकुर की बेटी यानी अली बख्श की दूसरी पत्नी प्रभावती देवी स्टेज एक्ट्रेस के अलावा उस जमाने की बेहतरीन और उम्दा डांसर थी। अली बख्श के साथ शादी के बाद प्रभावती देवी ने इस्लाम मजहब अपना कर अपना नाम इकबाल बेगम

रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं? है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं? ये चांद है या तुम्हारा कंगन? सितारे हैं या तुम्हारा आंचल? हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू? ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है? ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी, कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सही हम, दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें, क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत, अब दिल में यही बात इधर भी है

आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और आज के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक निरंतर रहते हैं। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। आज के लिए बस इतना ही। हम कोशिश करते हैं कि आपके सरोकार की बात करें, आपके दिल की बात करें और आपके जिंदगी का हम सफर बन पाएं। हर दिन कोशिश ये होती है कि कुछ नया किया जाए, और हम ये भी सुनिश्चित करते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रमों को सुन के आनंद आता हो, तसल्ली हो। और अगर आपका कोई फीडबैक है, आप ज़रूर हमें अपना फीडबैक भी भेजें। और भी सभी श्रोताओं का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं जो हमें अपना फीडबैक भेजते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके, या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, या व्हाट्सएप वॉइस नोट के माध्यम से। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 16 सेकंड। रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज के आज के इस विशेष प्रसारण सत्र के समापन का समय अब हो चुका है। आज का दिन शौर्य, स्मृति और संगीत के अद्भुत संगम का गवाह बना। आज रेडियो वितस्ता ने अपने श्रोताओं को इतिहास के गौरव और कला की बारीकियों से जोड़े रखा। आज के कार्यक्रम की मुख्य कड़ियां इस प्रकार रही। शौर्य गाथा, महाराणा प्रताप जयंती। आज के विशेष खंड में हमने भारत के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती हिंदू पंचांग के अनुसार पर उन्हें नमन किया। हमने चर्चा की कि कैसे मेवाड़ के इस शूरवीर ने स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनकी वीरता की कहानियों ने हमें याद दिलाया कि स्वतंत्रता से बढ़कर कोई भी धन नहीं है। दूसरा, वितस्ता का प्रवाह। जैसे कि हमारे स्टेशन का नाम रेडियो वितस्ता है, वितस्ता, आज हमने कश्मीर की इस पावन नदी के सांस्कृतिक महत्व पर एक विशेष फीचर प्रस्तुत किया। जिस तरह वितस्ता सदियों से सभ्यता को सींचती आई है, हमारा रेडियो भी प्रेम और भाईचारा की धारा प्रवाहित करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, मेरा भी जो जन्म है वो कश्मीर की वादी में हुआ है, और रेडियो वितस्ता का भी जो बेस है वो कश्मीर के साथ जुड़ा है। पर हम पिछले 36 वर्षों से अंबाला के लोगों की अलग अलग रूप में सेवा कर रहे हैं। अगला बिंदु है सामुदायिक चर्चा। स्थानीय कलाकारों और बुद्धिजीवियों के साथ आज हमने कला और संस्कृति के संरक्षण पर सार्थक चर्चा भी की। मेरे प्यारे श्रोताओं, आप घड़ी की सुइयां हमें विदा लेने का संकेत दे रही है। आज का दिन महाराणा प्रताप के साहस की यादों और वीरता और वितस्ता की लहरों जैसी शीतल के साथ बीती। आशा है कि हमारा आज का प्रयास आपके दिलों को छू गया होगा। कल सुबह फिर मुलाकात होगी नई ऊर्जा, नई उम्मीदों के साथ। रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर जाने से पहले आपके लिए हर रोज की तरह कुछ पंक्तियां और कल के कार्यक्रमों का विवरण। महाराणा प्रताप के शौर्य और वितस्ता के धैर्य को समर्पित ये पंक्तियां। झुकती नहीं जो किसी के आगे, वो आन की कहानी है हम। झुकती नहीं जो किसी के आगे, वो आन की कहानी है हम। प्रताप की स्वाभिमान और वितस्ता की रवानी है हम। मिट्टियों में महकती है आज उनकी वीरों की गाथा। मिट्टियों में महकती है आज भी उन वीरों की गाथा। भारत के गौरवमयी इतिहास की एक अमर निशानी है हम। भारत की गौरवमयी इतिहास की एक अमर निशानी है हम। तो ये आप सभी के लिए, आज के लिए, और आप सभी को ये समर्पित। जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रम का विवरण देते हैं। कल 10 मई 2026 रविवार को जो कार्यक्रम लाए हम पूरे दिन के लिए, वो इस प्रकार है। 5:58 पर वंदे मातरम से हम शुरुआत करते हैं, लाते हैं आपके लिए एक सुविचार, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं पंचांग के साथ। कल 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत और शब्द और गुरबानी भी।
7:05 पर हम चलेंगे आओ गांव चले कार्यक्रम एपिसोड 11 में पिंड तेजा मोड़ी अंबाला से। तो इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी और 8 बजे आप रविवार को सुनते हैं तुम्हें याद हो कि ना याद हो। कल एपिसोड 7 होगा और ये कार्यक्रम नरगिस दत्त पर तैयार किया गया है, पेश करेंगे रमेश मरहटा। 8:30 बजे रेडियो पॉडकास्ट किरनी के साथ और एपिसोड 14 परिवार के मायने। 9:30 बजे सुनहरे पल एपिसोड 3 हेमलता पर तैयार किया गया कार्यक्रम। 10:20 पर फादर्स डे स्पेशल प्रस्तुत करेंगे आरजे सैजल। संगीत की सभा जारी रहेगी और 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम में गजल और 7:15 पर सरगम एपिसोड 6 पेश करेंगे आरजे किरनी और 8:30 बजे हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मरहटा। और कल की कड़ी है देव आनंद और धीरज कुमार। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का। उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर नोट करें, हमारा नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। और आशा करता हूं कि आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे, घर परिवार का ध्यान रखेंगे, बड़े बुजुर्गों का आदर और सत्कार करेंगे और अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को अब दीजिए अनुमति। कल सुबह 5:58 पर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।